0: After petrol prices climbed to around 380 rupees a liter and diesel reached 409 rupees, adding to financial pressure in a country where the minimum monthly wage is around $145. But the rollout has proved difficult for some consumers, with motorcycle owners in Karachi reporting problems registering their vehicles and identification details for the subsidy.
1: कुछ लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 200, 100, 150 का पेट्रोल डालते हैं, तो वो देखे एकदम से वो 1300 या 1400 देना पड़ जाए, तो वो तो बेचारे डलवाएंगे ही नहीं, ठीक है? हमारे पास आज थे, तो आज हमने डलवा लिए, नेक्स्ट वीक क्या पता मैं भी ना डलवा सकूं, तो इसलिए बेहतर था कि यही पेमेंट अगर हमारे अकाउंट में आ जाती तो हम चाहे 100 का डलवाते या 200 का डलवाते तो ज़्यादा हमें फ़ायदा था.
0: Fuel dealers have also criticized the scheme, saying that the industry is not adequately consulted over how the subsidy will be implemented. Pakistan's electricity sector is also preparing for winter demand, with the power system expected to require up to 400 million cubic feet of gas per day, while LNG supplies remain limited.